0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vispa la burga. Milchi, burga.
2: Hello,
3: Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं
3: सर? मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ, सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: सर कुछ गा के सुनाइए।
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
3: वही सर, ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कोंडा में कौन से गाने
3: है? सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, ताने डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया।
2: मैं पागल है क्या?
3: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा?
2: सुन ले बात सुन पहले। और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है ये बंद कर रहा
3: सर। बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: एक टाइम पर, सिंगल टाइम पर आपके दो दो बॉयफ्रेंड्स हैं और ये आपके बॉयफ्रेंड नंबर वन और बॉयफ्रेंड नंबर टू को नहीं पता है, बट कई बार यू फील गिल्टी और आप इसके बारे में कन्फेस करना चाहते हो, बट करो तो किसको करो, बताओ तो किसे बताओ, जाओ तो कहाँ जाओ?
1: सीक्रेट बॉक्स.
2: Well, I think I've answered that question for you. You can hit me up Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. Aur mere saath right now hai mere mystery caller. Hi, mystery caller.
3: Hi, Roshi.
2: Kya haal hai aapke?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ.
2: अच्छा, और आपका कन्फेशन वो तो आपसे भी ज्यादा बढ़िया है जो आपने मुझे बताया. जरा आप खुल के संक्षिप्त में बताओ कि क्या है आपका कन्फेशन.
3: एक्चुअली पता है क्या हुआ है?
2: क्या?
3: कि मेरा एक हमारा एक फ्रेंड है, मतलब काफी जिगरी दोस्त है, तो उसने ना अभी रिसेंटली शादी करी है और हम लोगों को बताया उसने बाद में, जब उसने शादी करी तो उसके बाद हमें मिलवाया. एंड वो वहां जाने से पहले मैं एक थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देता हूँ आपको कि हम लोग चार पांच जी, लाइक ये यू नो ये जो मसाज पार्लर्स वगैरह होते थे ना,
2: नॉटी वाले.
3: हाँ, मतलब नहीं, मसाज वाले ही.
2: कल पैदा हुई थी मैं. अच्छा ठीक है, ओके. मसाज पार्लर्स, देन
3: मसाज पार्लर्स में हम जाते थे, यू नो उसी ने इंट्रोड्यूस कराया था कि यार ऐसा ऐसा होता है, मसाज पार्लर्स होता है. तो हमने कहा चलो ठीक है. तो हम गए वहाँ पे, हम जाने लग गए फिर, मतलब अच्छा लगता था तो जाते थे. तो ऐसे गए तो वहाँ पे एक लड़की थी, तो ये बोलता था यार ये बहुत अच्छी लगती है मेरे को लड़की, और उसी के पास ही ज्यादा जाता था मसाज करवाने. अब वो जब नहीं होता तो हम भी चले जाते थे. तो ये चला था, अच्छी लगती थी बोला, मैंने कहा हाँ ठीक है अच्छी लगती होगी ये वो. बट अब कट टू अपनी उस वाली प्रेजेंट, उसमें आते हैं. अब जब उसने इंट्रोड्यूस कराया, मतलब उसने बोला यार भाई मैंने तो भग के शादी कर ली है, ऐसा ऐसा है, तुम आ जाओ. और जब हम मिलने गए तो वो जो मसाज वाली जो लड़की थी ना, उसने उससे ही शादी कर ली है. और अब वो मसाज वाली जो लड़की है वो हमारी भाभी है प्रेजेंट में.
2: करेक्ट.
3: तो हमको अब इतना गिल्टी फील, मतलब गिल्टी क्या बताऊं, अब कैसे अब हम कैसे फेस करें, मतलब यू नो मेरे लिए ऐसी सिचुएशन हो गई कि अब भाभी को क्या बोलूं, पाए लागूं बोलूं या गले लागूं. यू नो ये ऐसा सच्चाई है जो सबको पता है, बट लेकिन हम जा भी नहीं सकते हैं उसके घर, बड़ा ही अजीब सा लगता है. मतलब भाभी को हमारे बारे में सब पता है, हमें भाभी के बारे में सब पता है.
2: आपको रोशिफाई कर दूं, मीठा मीठा मैं क्या निकालूं, आप खुद ही इसमें पड़े थे. विद अ हैप्पी एंडिंग, हियर इज टू योर हैप्पी एंडिंग.
0: यू हैव बीन रोशिफाइड.
2: आपसे बात करके बड़े मजे आए मुझे, मेरी एंडिंग हैप्पी हो गई, बताओ बिना आपको देखे. थैंक यू वेरी मच मिस्ट्री कॉलर. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई भी मिस्टीरियस बात है जो आप शेयर करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. सो हिट मी अप बेबी, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: ਜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਤਾ ਲੈ ਲਾ
1: ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ

डिस्क्लेमर, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन होने वाला है, बट जस्ट बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट साइनिंग अप अ न्यू लीज फॉर अ नया घर, आई वाज थिंकिंग टू मायसेल्फ, जैसे एक लीज में घर के लिए एक टर्मिनेशन क्लॉज होता है, एक फॉरफीचर क्लॉज होता है कि अगर हमारा नहीं चला टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिलेशनशिप तो हम कैसे इससे एग्जिट करेंगे दोनों प्यार प्यार से. वैसे ही जब शादी कर रहे होते हैं तो आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट अ प्रीनप. प्रीनप में तो ये होता है कि अगर शादी टूट गई तो ये तुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट शादी में या लिव इन रिलेशनशिप में जाते समय इमेजिन अगर एक टर्मिनेशन क्लॉज हो कि अगर हम दोनों में से कोई खुश नहीं है तो आप मेरे लिए ये करेंगे, मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे नहीं आएंगे और मेरे पास हक है आपको ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक करने का. सोचो इसके बारे में. साउंड्स रियली क्रेजी एंड कॉन्ट्रोवर्शियल, लेकिन अगर कपल्स बिफोर मूविंग इन टुगेदर ऐसी एक लीज ऑफ टर्मिनेशन साइन कर लें, देन ब्रेकिंग अप वुड बी सो लेस हार्ट ब्रेकिंग एज अपोज टू व्हाट इट इज राइट नाउ. और अगर आप मेरे साथ सहमत हैं, और अगर सहमत नहीं है तो भी, व्हाई डोंट यू हिट मी अप विद योर ओपिनियन इंस्टा पर या FB पर, एंड लेट्स गेट टॉकिंग अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड के ताने आपको कांटों की तरह चुभने लगे हैं, ये वही गर्लफ्रेंड है जिसके साथ आपने शादी करने के सपने देखे थे, तो हो सकता है कि आपके घर में जो कैक्टस है ना, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि वास्तु के हिसाब से जिस भी घर में कैक्टस होता है उसमें रिलेशनशिप्स में भी ऐसे ही चुभने वाली दरारें आ जाती हैं। सो बेसिकली एक तो ना गर्लफ्रेंड के साथ बिहेवियर सेल्फ किया करो, ये तो मैं पहले ही कह रही हूँ, और दूसरा ये कैक्टस सिचुएशन को ज़रा गौर से देखना, अगर घर में है तो निकाल दो और घर में थोड़ी शांति आ जाएगी। नॉट शांति आपके सोसाइटी की हॉट बेब, शांति एज इन पीस, तमीज में रहो आप। और अगर जिंदगी में और कोई भसड़ हो रही है, देन फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड आई एम कैक्टस फ्री बेबी, विंक विंक। ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu.

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. Na fiutba la burka. Milchi, burka.
2: Hello.
3: Hello, usko maan se mat uthao, yaar. Hello.
2: हेलो
3: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे, ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: तो मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
2: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और
2: पूरा
3: सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
2: सामान
3: उठवाना।
2: क्या मजाक कर रहा है?
3: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे
4: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Dance Gunny. Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर आप निहायती ऑपोजिट टू मी हो यानी कि कंप्लीटली अनरोमांटिक एंड यू डोंट वांट टू हैव लाइक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्वर्सेशंस और आप सेंसिबल हो टू द पॉइंट बातें करते हो, कितने बोरिंग इंसान हो, लेकिन अगर ये सब है आपकी जिंदगी में तो आप एक टॉरस को डेट कर लो, बिकॉज टॉरियंस को बिल्कुल यही पसंद है दैट यू नो लाइक इनक्रेडिबल पॉइंट वाली कॉन्वर्सेशन. और ऐसे ही टॉरस को मिलकर जब आप बोर हो जाओगे और उसके बाद उसको कैसे डंप करना है ये पूछना होगा, तो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और मेरे साथ ना आई एम गोइंग टू कॉल प्रांशु, जिन्होंने अपना नंबर भेजा और कहा लेट्स चैट बेबी.
3: हेलो
2: हेलो
3: हाँ जी कौन?
2: हम बोल रहे हैं. हम
3: कौन?
2: तूने मेरी आवाज नहीं पहचानी प्रांशु? रोशी बोल रही हूँ.
3: अच्छा हाँ, पहचान लिया.
2: इतनी देर लगती है, ये है तेरा प्यार?
3: हाँ मैं तो व्हाट्सएप के लिए बोला था, आपने तो कॉल ही कर दिया.
2: अच्छा पहले हम व्हाट्सएप पे करने वाले थे ये?
3: नहीं नहीं मतलब मैंने यार नॉर्मल बातचीत
2: करो ना फिर.
3: और क्या कर रहे हो आप?
2: मैं तो चिल कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हो? सिंगल हो आप?
3: हाँ सिंगल ही हूँ, चिल कर रहा हूँ मैं भी.
2: तो कितने साल के?
3: मैं 25.
2: तो गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी?
3: ये गर्लफ्रेंड आती आती रहती है.
2: तो लास्ट कब आई थी आपकी जिंदगी में गर्लफ्रेंड?
3: लास्ट हो गए होंगे 6 मंथ.
2: 6 मंथ हो गए आप 6 मंथ से सिंगल हो? ओह माय गॉड.
3: हमारे कोर्स में ज्यादा टाइम पे गर्लफ्रेंड रहती थी.
2: आप कौन, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो?
3: नहीं MBBS.
2: अच्छा तो आप दिल के डॉक्टर बनने वाले हो?
3: मुझे बनना है कार्डियोथोरेसिस सर्जन.
2: तो आप में और मेरे में क्या सिमिलैरिटी होगी जब आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओगे? तो
3: आप में मेरे में आप लोगों को खुश करती हो. मैं उन
2: नहीं बेवकूफ, आप लोगों के दिल का ख्याल रखते हो और मैं लोगों के दिल का ख्याल रखती हूँ.
3: ये तो है
2: करेक्ट. बट आप ऐसे मेरा दिल तोड़ रहे हो. आपके पास 3 मिनट है मुझे इम्प्रेस करने के लिए और आप कुछ नहीं कर रहे हो इन 3 मिनट में.
3: अच्छा नहीं हो रहा है?
2: नहीं करो कुछ मुझे इम्प्रेस करने के लिए यार. ऐसे काम नहीं बन रहा है आपका, समझ में नहीं आ रहा आपको?
3: अच्छा यार ऐसे ना मुझसे कॉल पे इतना इम्प्रेस वाली चीज होती नहीं है. अगर आप सामने से कभी मिलो तो मैं जरूर ट्राई कर सकता हूँ.
2: अच्छा ठीक है, मान लो कि मैं आपके सामने हूँ, फिर आप क्या करोगे?
3: मैं आपके लिए एक, अच्छा रोज आपको पसंद है?
2: मुझे फूल पसंद, आई मीन आई लाइक फ्लावर्स एज दे आर, बट मुझे काटे हुए फूल नहीं पसंद.
3: अच्छा काटे में नहीं पसंद?
2: नहीं.
3: तो ठीक है मैं आपको बिल्कुल पौधा लाके दूंगा गमले के साथ.
2: दिस इज सच एन ओल्ड आइडिया, सो मेनी बॉयज हैव ट्राइड इट. नेक्स्ट आइडिया, ये तो फेल हो गया भाई.
3: अच्छा ये तो फेल हो गया. अरे कोई नहीं, आप कहो तो मैं कैक्टस का पौधा लाके दूं आपको.
2: यार अब मुझे ना समझ में आ रहा है कि आप सिंगल क्यों हो पिछले 6 महीने से. इट्स नॉट बिकॉज कि आप अपने आप को रिज्यूविनेट कर रहे हो और उसके बाद आप एक और गर्लफ्रेंड बनाओगे, बट अगर आप ऐसे कोशिश कर रहे हो ना बंदी को इम्प्रेस करने से तो वो नहीं होने वाली है. आपको एक टिप दे
3: यार, अभी ना मेरे पास पिकअप लाइन नहीं आ रही कोई, अगर दिमाग में आती ना मैं.
2: और आपको लगता है कि मेरे जैसी लड़की एक पिकअप लाइन से मान जाएगी?
3: नहीं पर आप तो वही सुनना चाह रहे हो ना.
2: नहीं जी मैं वो सुनना नहीं चाह रही थी, और मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी दैट इफ यू वांट टू स्कोर विद अ वुमन यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू बी योरसेल्फ एंड यू डोंट हैव टू बी क्लेवर, यू जस्ट हैव टू बी रियल. रियल होना कितना मुश्किल है इस दुनिया में.
3: आई एम जस्ट बीइंग माईसेल्फ ओनली.
2: क्यूट तो बहुत हो आप, फालतू में मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ ऐसे ही. बट इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. अगली बार ना मैं ऐसे बिना बताए फिर से फोन करूंगी, और इस बार पहले 2 मिनट में मुझे इम्प्रेस कर देना ठीक है?
3: ओके बिल्कुल, अगली बार मैं लाइन सोच के रखूंगा आपकी.
2: लाइन सोच के रखना ताकि मैं आपको रोशिफाई कर दूं ठीक है?
3: ओके
2: बाय.
3: ओके बाय.
2: अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो बट यू डोंट हैव अ पिकअप लाइन हैंडी, व्हाई डोंट यू कीप वन ऑलरेडी, बिकॉज ना जाने without telling I might pick up the phone and call you, and if you want me to call you why don't you hit me up insta par ya fb par, I'll be happy to talk to you. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai ROCHIE. So do whatever you have to do but kahin mat jana jana kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

ओके आई हेट टू साउंड इनसेंसिटिव बट कई बार मेरी जिंदगी में ऐसे हुआ है कि मेरा ब्रेकअप हुआ और मुझे हाँ थोड़े टाइम के लिए बॉयफ्रेंड की काफ़ी याद आई, लेकिन उसके बाद बॉयफ्रेंड की गाड़ी और उसके ड्राइवर की बहुत याद आई. बिकॉज आई एम लाइक यार वो तो हर जगह अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज देता था और अब तो मेरी जिंदगी में वो है भी नहीं. बट आई प्रॉमिस यू मैंने कभी एक शुगर डैडी की तलाश नहीं की एज मच एज शुगर डैडी के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं. लेकिन अनलाइक मी आप एक ऐसे इंसान हो हु genuinely just likes the good life and found yourself a sugar daddy or ek sugar mama. I think we should totally talk about your story, Morning Glory. Aur wo karne ke liye, why don't you hit me up Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead and tell me all your sugary stories. Lekin kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: रोशी, मुझे अपने जिम से और अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड से इक्वली प्यार है और मैं पहली डेट पर जा रहा हूँ उसके साथ, लेकिन राइट आफ्टर द जिम. प्रॉमिस मैं नहाऊंगा, बट इज देयर एनी वे टू मेक श्योर दैट आई एम स्मेलिंग लाइक एज ब्यूटिफुल एज आई कैन स्मेल? ये मैसेज मुझे संजय ने लिखकर भेजा. आई लव यू सो मच
0: रोशी के DM से.
2: आई लव यू इसलिए क्योंकि आप अपने जिम और फिटनेस को लेकर काफी सीरियस लगते हो, विच इज अ ग्रेट थिंग संजय. और जब आप अपनी टू बी गर्लफ्रेंड को इन योर वर्ड्स मिलने जा रहे हो ऑन द फर्स्ट डेट, माई सजेशन इज कि नहाने के बाद ना जो भी आपके पास डिओड्रेंट है या परफ्यूम है उसे लगाने से पहले अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज कर लेना. मॉइस्चराइजेशन के बाद अगर परफ्यूम लगाओ तो उसकी स्मेल ज्यादा देर तक लॉक्ड इन टू द बॉडी रहती है. एक तो ये, दूसरा अपने पल्स पॉइंट्स पर, यानी कि अपने कान के पीछे, नेक के पल्स पॉइंट्स पर, अपनी रिस्ट पर, अपने नीज के पीछे, यहां खास करके परफ्यूम स्प्रिट्स करना. क्योंकि यहां अगर आपने परफ्यूम लगाया तो ना कि सिर्फ वो ज्यादा देर तक लास्ट करेगा, बट यू विल आल्सो स्मेल रियली इनक्रेडिबल काफी दूर से. इसे ट्राई करके देखो. इट्स ऑलवेज वर्क फॉर मी. आई होप इट वर्क्स फॉर यू. एंड ऑनेस्टली, ये ट्रिक ये नहीं है कि आप कितना खूबसूरत स्मेल कर रहे हो. ट्रिक ये है कि आपका दिल कितना बड़ा है और आपकी वाइब कितनी सॉर्टेड है. गेट योर वाइब ऑन एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस. और अगर आपको भी संजय की तरह हेल्प चाहिए, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, प्यार से लोग मुझे ब्रोशी कहते हैं. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आई प्रॉमिस आई ट्राई एंड हेल्प यू आउट. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Pepe Mirchi.
1: Iskabara, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Burga. Na vidva la burga.
0: Mirchi, burga. Burga.
2: हेलो
3: मिस्टर गौतम,
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: सर कुछ गा के सुनाएगा?
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
3: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। मैं एक पेशकश करूँ। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
2: सुन ले बात,
3: सुन पहले बात सुन।
2: और ऐसा बंद करिए, बिन बिन जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है। सर बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: Portugal. Na Vitkissat. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yeah, Portugal.

0: Mitchie. R-O-C-H-I-E. Roshi, Roshi. Mitchie Roshi.
1: Only on Radio Mitchie, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: एक टाइम पर, सिंगल टाइम पर आपके दो दो बॉयफ्रेंड्स हैं और ये आपके बॉयफ्रेंड नंबर वन और बॉयफ्रेंड नंबर टू को नहीं पता है, बट कई बार यू फील गिल्टी और आप इसके बारे में कन्फेस करना चाहते हो, बट करो तो किसको करो, बताओ तो किसे बताओ, जाओ तो कहाँ जाओ?
1: सीक्रेट बॉक्स.
2: Well, I think I've answered that question for you. You can hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ राइट नाउ है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी,
2: क्या हाल है आपके?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ.
2: अच्छा, और आपका कन्फेशन वो तो आपसे भी ज्यादा बढ़िया है जो आपने मुझे बताया. जरा आप खुल के संक्षिप्त में बताओ कि क्या है आपका कन्फेशन.
3: एक्चुअली पता है क्या हुआ है?
2: क्या?
3: कि मेरा एक हमारा एक फ्रेंड है, मतलब काफी जिगरी दोस्त है, तो उसने ना अभी रिसेंटली शादी करी है और हम लोगों को बताया उसने बाद में, जब उसने शादी करी तो उसके बाद हमें मिलवाया. एंड वो वहां जाने से पहले मैं एक थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देता हूँ आपको कि हम लोग चार पांच ही लाइक ये यू नो ये जो मसाज पार्लर वगैरह होते थे ना,
2: नॉटी वाले.
3: हाँ मतलब नहीं, मसाज वाले ही.
2: कल पैदा हुई थी मैं. अच्छा ठीक है, ओके. मसाज पार्लर्स, देन
3: मसाज पार्लर्स में हम जाते थे, यू नो उसी ने ही इंट्रोड्यूस कराया था कि यार ऐसा ऐसा होता है, मसाज पार्लर्स होते हैं. तो हमने कहा चलो ठीक है. तो हम गए वहाँ पे, जाने लग गए फिर, मतलब अच्छा लगता था तो जाते थे. तो ऐसे गए तो वहाँ पे एक लड़की थी, तो ये बोलता था यार ये बहुत अच्छी लगती है मेरे को लड़की, और उसी के पास ही ज्यादा जाता था मसाज करवाने. अब वो जब नहीं होता तो हम भी चले जाते थे. तो ये चला था, अच्छी लगती थी बोला, मैंने कहा हाँ ठीक है अच्छी लगती होगी ये वो. बट अब कट टू अपनी उस वाली प्रेजेंट उसमें आते हैं. अब जब उसने इंट्रोड्यूस कराया, मतलब उसने बोला यार भाई मैंने तो भग के शादी कर ली है, ऐसा ऐसा तुम आ जाओ. और जब हम मिलने गए तो वो जो मसाज वाली जो लड़की थी ना, उसने उससे ही शादी कर ली है. और अब वो मसाज वाली जो लड़की है वो हमारी भाभी है प्रेजेंट में.
2: करेक्ट.
3: तो हमको अब इतना गिल्टी फील, मतलब गिल्टी क्या बताऊं, अब कैसे अब हम कैसे फेस करें. मतलब यू नो मेरे लिए ऐसी सिचुएशन हो गई कि अब भाभी को क्या बोलूं, पाए लागू बोलूं या गले लागू. यू नो ये ऐसा सच्चाई है जो सबको पता है, बट लेकिन हम जा भी नहीं सकते हैं उसके घर. बड़ा ही अजीब सा लगता है, मतलब भाभी को हमारे बारे में सब पता है, हमें भाभी के बारे में सब पता है.
2: आपको रोशिफाई कर दूं, मीठा मीठा
3: सिचुएशन से मुझे निकालो यार.
2: मैं क्या निकालूं, आप खुद ही इसमें पड़े थे. विद अ हैप्पी एंडिंग, हियर इज टू योर हैप्पी एंडिंग.
0: यू हैव बीन रोशिफाइड.
2: आपसे बात करके बड़े मजे आए मुझे, मेरी एंडिंग हैप्पी हो गई, बताओ बिना आपको देखे. थैंक यू वेरी मच मिस्ट्री कॉलर. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई भी मिस्टीरियस बात है जो आप शेयर करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप बेबी, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: सेल्फ लव का सबसे बड़ा साइन होता है दैट यू आर ओनली इन प्लेसेस जहां आपको रिस्पेक्ट से और प्यार से ट्रीट किया जाता है. अब सोचो कि ऐसी जिंदगी में कौन से स्टेजेस थे जहां पर आप खड़े रहे या डटे रहे, जहां पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली और प्यार नहीं मिला. यू नो दिस इज समथिंग आई रेड वेरी रिसेंटली कि सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपसे तमीज से बात नहीं कर रहा है, कोई आपको प्यार नहीं दिखा रहा, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, फिर भी हम कई बार वहाँ डटे रहते हैं इन द होप कि यार शायद ये इंसान बदल जाएगा, शायद ये सिचुएशन बदल जाएगी. व्हाइल इट इज़ वेरी गुड टू बी अ वॉरियर, लेकिन कई ऐसी जगहें होती हैं जो हमारे लिए बहुत नेगेटिव होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, लेकिन हम उसे छोड़ते नहीं हैं सिंपली बिकॉज ये एक किताब में लिखा था दैट वी एक्सेप्ट द लव वी थिंक वी डिजर्व. कई बार हमें लगता है कि हम सिर्फ उतने ही प्यार के हकदार हैं जितना हमारे तरफ आ रहा है, और वो थोड़ा सा प्यार हो सकता है, शायद बेसिक से भी कम. सेल्फ लव का सबसे बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड ये होता है कि जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, जब कोई आपसे बदतमीजी से बात करता है, डोंट स्टैंड अप फॉर इट, लर्न टू से नो. ये मेरा 2025 का सबसे डिफिकल्ट लेसन है. ऑल्दो इट्स जस्ट बीन वन मंथ वन डे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट दिस इज अ लेसन आई एम गोइंग टू कैरी विद मी थ्रू आउट दिस एंटायर ईयर. जहाँ कोई ऐसा इंसान मुझे मिलता है जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो मुझे प्यार से ट्रीट नहीं करता है, आई एम नॉट गोइंग टू पुट अप विद दैट पर्सन और दैट सिचुएशन. और अगर आपके लिए भी जिंदगी में ऐसा ही कोई सेल्फ लव लेसन है दैट यू वॉन्ट टू शेयर विद मी, वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड आई एम वेटिंग जस्ट हियर फ्रॉम यू. एंड व्हाइल यू डू दैट, एक बात बताऊं, जिसके पास लव है उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स.

0: हेलो।
1: हाय शिवानी।
0: हाय
1: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
0: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
1: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
0: समाचार?
1: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
0: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
0: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
1: अच्छा।
0: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
1: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
0: आपको लेनी है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
0: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
1: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
0: आप सिर्फ
1: मेरी बात
0: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
1: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
0: सिर पे करवा ले
1: शिवानी।
0: हेलो,
1: आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
0: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद ही कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
1: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो,
0: नहीं
1: नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
0: कुकड़ुकु
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आपको पता है 1989 की फिल्म परिंदा का गाना प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी, ये परिंदा मूवी के डायरेक्टर वैसे विधु विनोद चोपड़ा थे, लेकिन ये पर्टिकुलर सॉन्ग वॉज शॉट बाय संजय लीला भंसाली जो उस टाइम विधु विनोद चोपड़ा को असिस्ट कर रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड विधु विनोद चोपड़ा वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय संजय लीला भंसाली कि फिर उन्होंने अपनी अगली फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के जितने भी सॉन्ग्स थे उनको शूट करने की जिम्मेदारी संजय लीला भंसाली को दी और यहीं से शुरुआत हुई संजय लीला भंसाली के आइकॉनिक सॉन्ग शूट्स की। उसके बाद तो फिर वो देख दनादन सिक्सर मारते रहे, लेकिन उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं परिंदा फिल्म के गाने शूट करने से हुई। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये गाना देखें तो ध्यान रखें दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ संजय लीला भंसाली। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: प्यार

0: Irani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो
2: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
1: हेलो
2: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठा यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार। कोई
1: कहाँ भिजवाना है
2: मैं आपको
1: बता दो।
2: नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
1: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं, वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा,
1: क्या मजाक कर रहा है?
2: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है।
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा ना, आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: Irani Jeans with Charu, only on Mirchi.

0: आपको पता है आनंद फिल्म जब बन रही थी तो डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने राइटर गुलजार साहब को एक बात बिल्कुल क्लियरली बताई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उन्होंने ये बताया था भाई कि फिल्म की शुरुआत में ही ऑडियंस को पता चल जाना चाहिए कि आनंद राजेश खन्ना साहब का किरदार जो है वो मर चुका है। सस्पेंस में नहीं रखना है कि ऑडियंस पूरी फिल्म में सोचती रहे कि ये जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे या क्या होगा। एंड आई थिंक दिस वर्क्ड ब्रिलियंटली फॉर दैट फिल्म, क्योंकि आपको पहले से पता है वो इंसान नहीं है और आप उसकी कहानी देख सुन रहे हो। एंड देन यू गेट टू नो कि ही वाज सो फुल ऑफ लाइफ, और आपको लगता है कि यार आपकी जो परेशानियां हैं फिर वो कितनी छोटी हैं। तो हम भी फुल ऑफ लाइफ हो सकते हैं, हर मोमेंट को जी सकते हैं जैसे आनंद जीता था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

आपको पता है अर्ली 80s में संजू बाबा, संजय दत्त और कपूर ब्रदर्स यानी कि रणधीर कपूर एंड स्पेसिफिकली ऋषि कपूर, इनका आपस में थोड़ा सा ऐसे झगड़ा हो गया था, खिटपिट हो गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और अक्सर बंदों के बीच में जब खिटपिट होती है तो क्या वजह होती है, बंदी वजह होती है, एंड दैट बंदी वॉज टीना मुनीम। सो उस टाइम पे संजय दत्त एंड टीना मुनीम वर डेटिंग, और उसी के साथ ये रूमर्स आए बिकॉज टीना मुनीम वॉज वर्किंग, हैड वर्क्ड विद ऋषि कपूर इन कर्ज मूवी, और रणधीर कपूर के साथ वो हरजाई नाम की मूवी में काम कर रही थी। तो ऐसे रूमर्स आए कि वो दोनों के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड हैं, समहाउ रणधीर कपूर के साथ भी और ऋषि कपूर के साथ भी, विच वॉज नॉट ट्रू। और इन रूमर्स ने संजय दत्त को बहुत अपसेट कर दिया, और उनको ऐसा लगा कि ये रूमर्स कपूर ब्रदर्स ने फैलाए हैं, तो उनकी थोड़ी सी ऐसी खिटपिट हो गई। देन नीतू सिंह इंटरवीन्ड एंड उन्होंने ये सारा जो कंफ्यूजन था ये सॉल्व किया, और फिर उसके बाद वो लोग अच्छे टर्म्स पे हो गए। होता रहता है, चलता रहता है, फिल्मी दुनिया है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

हाय वो टाइम जब हम फिल्म स्टार्स के अपने फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस के पोस्टर्स अपने कमरों में लगाते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अभी शायद एज अ स्क्रीन सेवर लगाते होंगे अपने फोन में उनकी फोटो। और क्योंकि एक टाइम पे पोस्टर्स बहुत पॉपुलर थे तो कयामत से कयामत तक फिल्म जब हिट हो रही थी ना, तो इसको प्रमोट करने के लिए बॉम्बे में एक प्रमोशन की गई कि अगर आप कयामत से कयामत तक के 8 से ज्यादा टिकट खरीदेंगे तो आपको आमिर खान और जूही चावला का पोस्टर मिलेगा फ्री फ्री फ्री। एंड गेस व्हाट, इट वर्क्ड। ऑलरेडी लोग फिल्म देखने आ रहे थे, पोस्टर के लालच में और आ गए, फिल्म और हिट हो गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: भांग की गोली और नखरे वाली
1: दूंगी मैं गाली।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

आपको पता है 1973 की फिल्म लोफर, उसमें उफ धर्मेंद्र इतने हैंडसम लगते हैं भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पर धर्मेंद्र की सुंदरता मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि ये फिल्म वॉज अडेप्टेड फ्रॉम एन अमेरिकन फिल्म 1961 की पॉकेट फुल ऑफ मिरेकल्स, जो अगेन 1933 की एक फिल्म लेडी फॉर अ डे का रीमेक थी। इसी सब्जेक्ट पे 1989 में एक हांगकांग में फिल्म बनी थी मिरेकल्स नाम से, और इसी सब्जेक्ट पे 2008 में बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी सिंग इज किंग। तो सोचिए फिल्मों का इतिहास मतलब कहां से कहां जाता है भाई। खैर हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। लोफर फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं, रिटन बाय आनंद बख्शी साहब, कंपोज्ड बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड संग बाय मोहम्मद रफी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello?
4: Hello, Mr. Gotham.
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर, मैं एक्चुअली आपसे ना वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
3: कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: सर कुछ गा के
4: सुनाइए। हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
4: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
3: कोंडा में कौन से गाने
4: हैं सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। मैं एक पेशकश कर रहा हूँ। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
3: सुन ले बात सुन पहले। और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
4: है। सर बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर।
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: आपको पता है विनोद खन्ना साहब को कुछ प्रिंट मीडिया में सेक्सी सन्यासी भी कहा जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, क्योंकि फिल्मों में एनीवे उनको बहुत हॉट बहुत गुड लुकिंग माना जाता था, जो कि वो थे। और अचानक से एट द पीक ऑफ हिज करियर 1978 में उन्होंने फिल्मों से अपना ब्रेक अनाउंस कर दिया और 1982 में वो स्पिरिचुअल गुरु ओशो के फॉलोअर बनके अमेरिका में उनके आश्रम में चले गए, जहां उन्होंने बहुत अलग अलग तरह का काम किया, माली का काम किया, रसोइये का काम किया। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप एकदम बैठे रहो बस और ध्यान ही करते रहो 24 घंटे, ये तो कहा नहीं, तो काम भी देते थे करने के लिए, तो उसमें बहुत मज़ा आता था। और वो काम जो मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किए, एक माली का काम, यू नो, एक रसोइये का काम। रसोई का तो खैर मैं कुकिंग वुकिंग में बहुत इंटरेस्ट लेता था पहले भी, फिर मैं इलेक्ट्रिशियन बना, प्लम्बर बना, मैंने हैवी मशीनरी चलाई, मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीज़ें मैंने की, तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए, कंस्ट्रक्शन वर्क किया मैंने, तो ये चीज़ें मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता अगर मैं उनके साथ मिलता।
0: सही है भाई, जीवन में हर तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, भौतिकता, अध्यात्म, लड़ाई, झगड़ा, प्यार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: one of the finest actresses of Indian cinema, Nootan Ji. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ. उनका फिल्मों में आना शौक था या इत्तेफाक था? एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था.
1: ना इत्तेफाक था ना शौक था, मुझे लगता है एक क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही फिल्मों में थे. मेरे डायरेक्टर थे मेरे पिताजी और मेरी माता जी उस जमाने की फिल्म स्टार थी, तो एक नेचुरल चीज. मेरी पहली फिल्म थी हमारी बेटी और उसकी शूटिंग शुरू हुई थी लेट 1949 अर्ली 50 में.
0: अच्छा, इस टाइम ना नूतन जी अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस थी क्योंकि वो बहुत स्लिम थी और आग में घी डालने का काम करते थे रिश्तेदार कि हाय कितनी पतली लड़की है, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ. लेकिन इनकी जो शुरुआती फिल्में आई ना उनमें इनके काम की बहुत तारीफ हुई. फिर वही रिश्तेदारों के स्टेटमेंट्स बदल गए कि क्या टैलेंटेड लड़की है हमारी, पतली है तो क्या हुआ. अच्छा, इसी दौरान ना नूतन जी को स्विट्जरलैंड भेजा गया एक फिनिशिंग स्कूल में, जहाँ से वो और भी ग्रूम्ड कॉन्फिडेंट होकर लौटी. मैं भी वापस आती हूँ थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची.

0: नूतन जी जितनी कमाल की एक्ट्रेस थी उनको म्यूजिक का भी उतना ही शौक था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इनफैक्ट उन्होंने अपनी एक फिल्म छबीली में खुद का गाना प्लेबैक भी किया था, लेकिन फिर ये आगे कंटिन्यू नहीं किया। सुनिए इस बारे में एक बहुत पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मैंने बचपन से, जब मैं 2.5-3 साल की थी, तब से मैंने क्लासिकल गाना सीखा। 14-15 साल मैंने गाना सीखा पंडित जगन्नाथ प्रसाद से, और वो तो मेरा रियाज जारी रहा, लेकिन मैंने उसको इतना फिल्मों में मैंने कंटिन्यू नहीं किया। फिल्म बनाने में एक संगीत की दुनिया और होती है और अदाकारी की दुनिया और होती है, और चूंकि मैं ऑलरेडी एक कामयाब अभिनेत्री रही थी उस वक्त भी, क्योंकि छबीली जब बनी थी उस वक्त मेरी सुजाता भी बन चुकी थी, मेरे 2 ऑलरेडी अवार्ड्स दे थे मुझे, तो उसके बाद मैं ये इंसिस्ट नहीं करना चाहती थी कि भाई मैं खुद ही अपने गाने गाऊंगी, क्योंकि उसमें एक डर था कि अगर मैं ये इंसिस्ट करती तो शायद मैं अच्छे अच्छे रोल्स गंवा देती।
0: ये भी ठीक है। वैसे अगर आप पेइंग गेस्ट मूवी देखे ना, तो उसमें एक सीन है जहाँ पर एक डिबेट पोयम कंपटीशन टाइप का है, तो वहाँ पे जो भी गाया है ना नूतन जी ने, वो उनकी खुद की आवाज है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
1: कभी कभी मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 80s से पहले नूतन जी और दिलीप कुमार साहब की कोई फिल्म साथ में नहीं आई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। क्यों नहीं आई इस बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए नूतन जी ने क्या शेयर किया था।
2: आई तो नहीं, लेकिन हमने एक फिल्म इकट्ठे बनाई थी जो अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से रिलीज नहीं हो पाई। उस फिल्म का नाम था शिकवा, बहुत पहले बनी थी 1951-52 में।
1: इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि उनके फेवरेट को स्टार्स कौन थे।
2: एक तो बलराज जी थे और दूसरे अशोक कुमार जी और राज कपूर जी। राज कपूर जी क्योंकि वो खुद डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उनको एक फिल्म मेकिंग का बहुत ही नॉलेज है, और एज एन आर्टिस्ट वो दूसरे आर्टिस्ट की कदर बहुत करते हैं, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए। और एज एन आर्टिस्ट भी और एज ए हीरो भी मुझे अमिताभ जी बहुत पसंद है।
1: वैसे बच्चन साहब के साथ उनकी एक जो फिल्म आई थी उसे ना हमारे घर में गुड़ वाली फिल्म बोला जाता है। उस फिल्म में गुड़ बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, रिश्ते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। सौदागर फिल्म। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय।
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
1: समाचार
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
2: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3
1: करता हूँ।
2: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: अपने सिर पे करवा ले।
2: शिवानी,
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो,
1: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ,
2: मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शाला, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पुरानी जींस विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: एक पुराने इंटरव्यू में ना नूतन जी से थोड़ा ट्रिकी थोड़ा बोल्ड सा क्वेश्चन पूछा गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बड़ा सटली पूछा गया था कि अक्सर फिल्मों में रोमांटिक सीन करते हुए रील वाली फीलिंग का रियल वाली फीलिंग में बदलने का खतरा रहता है। इस पर सुनिए नूतन जी ने क्या कहा था।
1: क्या है कि हम जब काम करते हैं तो एक स्विच ऑन और स्विच ऑफ चीज हो जाती है। उस वक्त के लिए हम डायलॉग याद करते हैं और उस वक्त के लिए वो हम एक्टिंग करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पर्सनल रिश्ते नाते हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे रह जाते जो हमेशा थे पहले की तरह।
0: वेरी स्मार्ट आंसर। और किन किन एक्टर्स के साथ उनकी जोड़ी पॉपुलर रही इसके बारे में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: देव साहब, देवानंद जी, मेरी पिक्चरें बहुत सी बनी थी, लगातार बनती गई। जब हमारी जोड़ी क्लिक हो गई तो बहुत से प्रोड्यूसरों ने और देव साहब ने खुद भी अपने पिक्चरों में हम दोनों को ही लिया था। तेरे घर के सामने, पेइंग गेस्ट, बहुत सी और पिक्चरें थी, मंजिल। उसके बाद राज जी के साथ, राज कपूर जी के साथ अनाड़ी बनी, छलिया बनी, और उसके बाद बनी सुनील दत्त जी के साथ। तो एक जमाना आ जाता है जैसे एक पैर क्लिक कर जाता है।
0: सही है, इसी बात पे ब्रेक ले लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: Only on Radio Mercy, New York. It's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: नूतन जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस एवर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नूतन जी जिस तरह से इमोट करती थी ना, यू जस्ट कांट टेक आईज ऑफ हर फेस। और एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि कोई भी कैरेक्टर प्ले करने से पहले क्या उनके मन में चलता है, कैसे वो तैयारी करती हैं।
1: देखिए, जब मैं भूमिका करती हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हूँ। जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल उसमें खो जाती हूँ। और मैं ये यानी यकीन करना चाहती हूँ कि वो लड़की जो मैं कर रही हूँ वो मैं खुद हूँ। जो भी उसके साथ अच्छा बुरा हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है। और उसके मुताबिक मेरा ख्याल है अब वो जो एक्टिंग होती है वो अपने आप खुद ब खुद आ जाती है।
0: और उनकी सभी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस में से उनकी फेवरेट कौन सी रही?
1: देखिए, मुझे वो रोल करने में बहुत ही अच्छा लगा, वो था रोल बंदिनी का। क्योंकि वो रोल बहुत मेरे हिसाब से उसमें वेरिएशंस बहुत थी, कुछ हद तक डिफिकल्ट भी था। और अलग अलग उसमें सारे यानी कि अलग अलग उसमें ढंग थे, अलग अलग उसमें एक्सप्रेशंस थे, अलग अलग फीलिंग्स थी।
0: वैसे ये फिल्म देख के ना मैं थोड़ी सी डिसहार्टन हो गई थी। इतने हैंडसम धर्मेंद्र के प्रपोजल को नूतन जी ने ठुकरा दिया था। तब समझ नहीं थी ना कि क्या मीनिंग था उस फिल्म का। खैर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: करो।
1: वे नूतन जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो एक पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में उनके प्रोफेशन की वजह से उनको दिक्कत नहीं आती।
2: आती तो है, लेकिन उसमें मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का भी बहुत साथ है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत अंडरस्टैंडिंग है। वो जानते हैं कि भाई ये बहुत बिजी हैं, तो वो ज्यादा डिमांड नहीं करते।
1: और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी एक वजह थी कि नूतन जी कभी थोक के भाव ऐसी फिल्में नहीं करती थी, गिनी चुनी फिल्में करती थी।
2: मैंने कभी भी पूरे मेरे करियर में 5 या 6 से ज्यादा पिक्चर इकट्ठे कभी नहीं ली। मुझे अपने हॉलीडेज भी मिल जाते हैं और अपने परिवार के साथ भी।
1: और फिल्मों में काम करने के अलावा और क्या करना उनको अच्छा लगता था?
2: इन कामों की वजह से मुझे वैसे दूसरा कोई काम करने को वक्त ही नहीं मिलता, टू टेल यू द ट्रूथ। वैसे घर बार है, सब लोग परिवार हैं, सब बहुत खुश हैं, तो उसमें ही काफ़ी, यानी कि मैंने कहा जैसे मैं हॉलीडेज लेती हूँ तो अपने परिवार के साथ काफी दिन गुजार सकती हूँ।
1: वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep Na Vila Murga! Mente Murga!
1: Alô?
2: अरे उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
1: हेलो
2: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
1: कहाँ भिजवाना है?
2: मैं आपको
1: बता दो।
2: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
1: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और
1: पूरा
2: सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा,
1: क्या मजाक कर रहा है?
2: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे
3: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ಸಗಮಗ ಮಗ ಸರಿ ಸರಿ ಸಗಮಗ ಸಗಮಗ ಪದ ಪ.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय।
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
1: समाचार
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे अच्छा। टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद लेना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ।
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी।
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज, फोन करना। शिवानी मेरी बात सुनो
1: नहीं बदतमीजी
2: नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ू
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।
2: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बच्चों को चीजों की वैल्यू करना कैसे सिखाएं? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक छोटी सी बात मुझे याद आई तो मैं शेयर कर रहा हूँ, बताइए सही है गलत। तो जब मेरे दो बच्चे हैं, जब वो बड़े हो रहे थे ना, तो पहली बच्ची मुझे याद है, तो खाने में बहुत समय लगाती थी वो, और कई बार वेस्ट कर देती थी, और वो कहती थी अभी मन नहीं हो रहा। तो मैं खाने के लिए और खिलौने के लिए मैं कहता था, कपड़ों के लिए भी, कि भाई जो तुम्हें नहीं पसंद है चलो कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा खाना कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं बाहर जाते हैं, किसी जिसको जरूरत है जरूरतमंदों को हम दे आते हैं, ताकि उसमें ये वैल्यू डेवलप होने लगे कि वेस्टेज नहीं कर सकते, और दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है तो उनको हम दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठने लगा कि ये जरूरी है, हम वेस्ट नहीं कर सकते। बट धीरे धीरे क्या हुआ, कभी समय नहीं होता, कभी रात ज्यादा हो गई, तो वो जो छोटा सा हमने एक एक्सरसाइज शुरू किया था वो लुप्त होने लगा। तो मैं देखता हूँ कि मेरी छोटी बेटी के लिए साथ में वो कर नहीं पाया, और मुझे कभी कभी लगता है कि बड़ी और छोटी में यही फर्क है कि बड़ी वाली को ये समझ में आ गया लेकिन छोटी वाली को ये समझ में नहीं आया। तो कभी कभी मुझे लगता है यार मैं ये पूरा नहीं कर पाया, और फिर मैं अपने आप को कहता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर ये संस्कार घर में है कहीं ना कहीं उसको समझ में आ जाएगा। ऐसे केस में दो सवाल है, क्या ये सही तरीका है उनको ये समझाने का कि ये आपका नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है, तो इनको वैल्यू करना सीखो, और दूसरा अगर आप ये कैरी ऑन नहीं कर पाते तो उस सिचुएशन में क्या करें?
4: 100% ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि व्हेन यू डू एन एक्टिविटी, एक बच्चे के साथ आप समय बिताते हैं, आप उसको लेकर के गए, आपने उसको दिखाया, जब भी हम पेरेंटिंग में थोड़ा समय देते हैं तो वो बच्चा सिर्फ आपको सुन नहीं रहा है, वो एक इमोशनल राइड से गुजर रहा है।
3: बिल्कुल,
4: वो इमोशंस भूलती नहीं है। सुना हुआ भूल सकता है, पर जो आपने एक बार फील कर लिया, महसूस कर लिया, वो नहीं भूलता,
3: वो जिंदगी भर रहता है,
4: वो जिंदगी भर रहता है। कहीं पर भी आप किसी एक स्पिरिचुअल क्लास में भी गए, आपको कई बार सुना हुआ याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा था, लेकिन वो जो एक वाइब्रेशन है वो आपको याद रहता है। तो जब आपने वो एक्टिविटी उनके साथ करी, आप लेकर के गए, आपने दिखाया कि कहीं ऐसे भी हैं जिनको मिलता नहीं है, फिर आपने उनको हेल्प करना सिखाया, उनको रियलाइज कराया कि फूड वेस्ट नहीं करना, इट इज दिस होल एक्ट हैज क्रिएटेड समथिंग विद इन हर, तो वो चीज उसको बिल्कुल भी भूल नहीं सकती है। सेम चीज आप नहीं कर पाए अपनी छोटी डॉटर के साथ, अब जो हो गया हो गया,
3: बिल्कुल
4: उसको तो हम बैठ करके गिल्ट में भी जाना और डिसहार्टन होने से कोई फायदा नहीं है, बट आई थिंक वी कैन डू इट नाउ।
3: अच्छा,
4: इनफैक्ट अभी दोनों चीजें काम करेंगी, बिकॉज नाउ द इंटेलेक्ट हैज डेवलप्ड, तो वो समझ में भी आएगा।
3: अच्छा,
4: और वो फील भी होगा, उस एज पर केवल फील हो रहा है, इस एज पर आपको समझ में भी आ रहा है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अच्छे काम करने का कोई समय नहीं होता, आप उसे कभी भी कर सकते हैं। आइए इस बारे में समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: So there's never a, ऐसा कभी नहीं होता कि लेट हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि अब वो बड़े हो गए, अब समय उनके पास भी कम है, वो भी विलीन हो गए अपनी अपनी चीजों में।
4: लेट ऐसे अगर हम लेट शब्द यूज करें ना, तो फिर तो हमें हर चीज के लिए लेट लगेगा। But then they say ना, it's never too late. If you really want to learn, if you really want to change, so when you know better, you do better.
3: बिल्कुल।
4: You can start at any moment. आप लेट बोलेंगे तो फिर वो, देखो एज तो बेस्ट होती है छोटेपन से, क्योंकि जैसे आपको कहा कि वो एक स्पॉन्ज जैसा होता है। तो गर्भ से लेकर के ऑलमोस्ट 6-7-8 ईयर्स तक इट्स अ वेरी गुड एज टू टीच योर चाइल्ड एनीथिंग।
3: बिल्कुल,
4: उसमें वो जल्दी अब्सॉर्ब करता है, जल्दी एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर वो समय निकल गया तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम चीजें सीख नहीं सकते। इनफैक्ट मैंने कई बार ये भी देखा है कि उस समय तो आपने अब्सॉर्ब कर लिया, अब आप विलिंगली करते हैं।
3: हाँ, क्योंकि वो आदत बन जाती है।
4: अगर आपने रियलाइज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आज चूज करती हूँ कि मुझे खाना वेस्ट नहीं करना, नाउ इट इज माय डिसीजन।
3: बिल्कुल,
4: मैंने समझ लिया। आप, हम लोग कितने बच्चे देखते हैं जिनको स्कूल में सिखाया जाता है, बाद में छोटी सी चीज है, उनको टीचर कहती है से नो टू क्रैकर्स।
3: बिल्कुल,
4: और वो बताती है इससे क्या नुकसान होता है, फैक्ट्री में गरीब बच्चे हैं,
3: बैठ जाता दिमाग में,
4: सब बैठ जाता है। अब वो घर आकर के पेरेंट कहता है थोड़े से चला लेते हैं,
3: नहीं चलाएंगे,
4: वो नहीं चलाते
3: क्योंकि समझ में आ गया उनके,
4: उनको समझ में आ गया। अब वो विलिंगली चूज कर रहे हैं कि हमें नहीं, बड़े कह रहे हैं भले कर लो, छोटे कहते हैं नहीं नहीं,
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
4: हमने समझा है, हम नहीं करेंगे। सो इट इज नेवर टू लेट, नाउ दे हैव रियलाइज्ड,
3: बिल्कुल,
4: एंड दे हैव टेकन अ डिसीजन विलिंगली, तो अब पूरी लाइफ के लिए होगा वो चीज।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
1: जब मैं बहुत छोटा था, छोटा तो क्या, मैं शायद अडल्ट के दौर में भी होता था, मेरी माँ और मेरा जो रिश्ता था ना, वो बड़ा ही बड़ा प्यारा रिश्ता था, अजीब भी था। हम दोनों में ना बहुत प्यार था, आज भी है, हमेशा रहेगा, लेकिन हम में बहुत अहंकार भी था। तो हम में जब भी लड़ाई होती थी, किसी बात की लड़ाई होती थी, अनबन हो गई, बातचीत हो गई, तो हम एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे, हम बात करना बंद कर देते थे। और हमेशा ये रहता था कि उनकी गलती है, वो आके बोलें, वो बात करें, मैं क्यों बात करूं। और उनकी तरफ से भी ये रहता था कि भाई मैं तो इसकी माँ हूँ, विशाला के बात करें, मैं क्यों करूं। और ये सिलसिला 3-4-5 दिन चलता था, मतलब पापा के थ्रू बात कर रहे हैं, बहन के थ्रू बात कर रहे हैं, ये सिलसिला है, उसको जाके बोल दो, उनको तुम बोल दो, ये चलता रहता था। अब मुझे समझ में आता है कि ये व्यर्थ था, क्योंकि अब तो वो चली गई, अब मैं किससे झगड़ा करूं। और दूसरी बात ये है, अब मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अहंकार ही था। लेकिन जो मेरे समझ में आ नहीं रहा है कि वो, हम परेशान बहुत होते थे, शायद वो भी उतनी परेशान होती थी, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन वो हम निकाल नहीं पाते थे। आई कुड नॉट समन द करेज टू गो एंड से सॉरी टू हर, और शायद 4 दिन बाद जाके मैं बोल दूं, लेकिन बचपन में वो सीख कहां से आई मुझे पता नहीं। और मुझे याद है मम्मी हमेशा कहती थी कि जब मैं नाराज हूं उस समय आके मुझे बात मत किया करो, तुम 2 घंटे बाद आके मुझे बोल दूंगा, सुन लोगी तुम्हारी बातें, लेकिन जब मैं तुम पे गुस्सा कर रही हूँ उस समय मुझसे बात मत किया करो। और वो मुझ में भी बैठ गया। लेकिन ये साइलेंट ट्रीटमेंट वाला किस्सा, ये पूरी जिंदगी चला उनके साथ। तो ये जो ईगो मुझ में आया, ये अहंकार आया, स्वाभिमान मैं समझता था इसको, ये कैसे आया? और मैं जानता हूँ ये कई घरों में होता है,
2: सब घरों में होता है कई बार।
1: तो इसको कैसे तोड़ा जाए?
2: साइलेंट ट्रीटमेंट भले नहीं होता होगा, लेकिन देखो ये ईगो का जो रूप है, ईगो के जैसे हमने कहा बहुत रूप होते हैं, उसमें से एक ईगो का जो रूप है जिसको हम कहेंगे आई एम राइट। क्यों? क्योंकि हम लोग डिफरेंट हैं।
1: हाँ।
2: और जो मैंने अक्वायर किया, जो मैंने सीखा, जो मेरे संस्कार है, मुझे लगता है कि मैं राइट हूँ।
1: बिल्कुल,
2: जो सही भी है, बस हम इतना भूल जाते हैं कि मैं राइट हूँ अपने पर्सपेक्टिव से।
1: हाँ, सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी सही हो सकता है।
2: है, होता ही है ना, हो सकता है नहीं।
1: हाँ।
2: होता ही है। इट इज जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप ये बॉटल देखे, हमारे पास ये बॉटल है।
1: हाँ।
2: आप अगर यहाँ से देखे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा कलर दिखाई?
1: ट्रांसपेरेंट, सफेद कह सकते हैं आप,
2: ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब हम कब तक आर्ग्यू कर सकते हैं इस पर?
1: जिंदगी भर कर सकते हैं,
2: जिंदगी भर कर सकते हैं। अब हम में से राइट कौन है?
1: दोनों सही है, क्योंकि इसका कैप जो है, जो आपकी तरफ है वो हरे रंग का है, और जो बॉटम है वो मेरी तरफ है जो ट्रांसपेरेंट है।
2: लेकिन अगर आपको ग्रीन देखना है और मुझे अगर ट्रांसपेरेंट देखना है, तो क्या करना पड़ेगा?
1: बोतल को उल्टा करना पड़ेगा ताकि मैं हरा देखूं और आप।
2: ये हम चाहते हैं पर ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये फिक्स्ड है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम बोतल को चेंज करना चाहते हैं, हम सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। सिचुएशन फिक्स्ड है। आप जिस चीज के ऊपर आर्ग्यू कर रहे होंगे, कोई भी बात होगी, बात नहीं बदल सकती।
1: बहुत बढ़िया।
2: अब मुझे अगर वापस इसको ट्रांसपेरेंट देखना है और आपको ग्रीन देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? दिस कैन नॉट चेंज, ये नहीं बदल सकता।
1: तो हमें अपना नजरिया और अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी।
2: एब्सोल्युटली,
1: बिल्कुल सही कह रहे
2: हैं। वो नहीं हम करना चाहते।
1: बहुत बढ़िया।
2: मुझे ये चीज आपके परसेप्शन से देखनी पड़ेगी और आपको ये चीज मेरे परसेप्शन से देखनी पड़ेगी। और कभी कभी तो ऐसा होगा कि हम देख भी नहीं पाएंगे, हमें सिर्फ एक दूसरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, शायद आपके नजरिए से ये ट्रांसपेरेंट है।
3: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Morning. Only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: हम सब अलग अलग यूनिक पर्सनालिटी हैं, इसलिए हमारा चीजों को देखने का नजरिया भी अलग होता है। कैसे समझते हैं?
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ।

0: मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
1: हम सारे डिसीजंस जो लेते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से लेते हैं, और जो इंटेंशन होता है वो दूसरे को हेल्प करने का होता है। तो हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि नहीं ये गलत है तो तुम मत करो, और इंटेंशन तो सही है, और सामने वाला कहता है मैंने देखा है ये सही है, मेरे बाकी दोस्त कर रहे हैं, मैंने भी देखा है, मैंने भी जिंदगी देखी है, दुनिया देखी है, तो आप बीच में मत पड़िए, और वहीं से शुरुआत होती है टकरार की। तो ऐसे केस में क्या करें? आप जो कह रही हैं बहुत सुंदर बात आपने की, भाई सिचुएशन तो नहीं चेंज होगी, अपना नजरिया बदलो, लेकिन नजरिया जो आ रहा है वो तो एक्सपीरियंस से ही आ रहा है।
2: एक्सपीरियंस से आ रहा है, इसलिए उस समय जो मन हमारा कहता है, ईगो क्या कहता है, मैं सही हूँ आप गलत है। ईगो की लैंग्वेज ये है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में है, मदर सन के बीच में है, किसी के बीच में भी हो सकता है, पर ईगो की भाषा क्या है, मैं राइट हूँ आप रोंगे, सामने वाला कह रहा है मैं राइट हूँ आप रोंगे। अब जब हम ईगो को मना ईगो से बाहर निकलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको हम कहेंगे, तो वहां पर हमें ये रियलाइज होता है कि सही गलत की बातें नहीं है, हम अलग अलग हैं। सही गलत नहीं है, हम अलग अलग हैं, और क्योंकि हम अलग अलग हैं इसलिए एक ही चीज हमें अलग दिखाई दे रही है। Which means I may not agree with you, but can I accept you?
1: बहुत जरूरी है।
2: मैं जरूरी नहीं आपके साथ अग्री करूं, क्योंकि वो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो उससे जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, और मुझे मेरा राइट ठीक लग रहा है, तो हम वो कर सकते हैं जो हमें ठीक लग रहा है, जो मुझे ठीक लग रहा है मैं कर सकती हूँ, जो आपको ठीक लग रहा है आप कर सकते हैं।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब हमारे अंदर ईगो आ जाता है तब अंदर प्यार की एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, कैसे जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ऐसा हर बार होता है क्योंकि मुझे पता था कि प्यार तो बहुत है मम्मी को मुझसे, मुझे भी बहुत प्यार है, एक्सेप्टेंस भी है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं हम, लेकिन कुछ कुछ मुद्दों पे हम बहुत अड़ जाते थे। तो मुझे कभी कभी अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ मुझे लगता है कि कहीं कंट्रोल था, कहीं वैलिडेशन की बात हो रही थी। तो मुझे लगता है ईगो, जैसे आपने कहा फियर, सैडनेस और एंगर, ये तीन चीजों पे होता है, तो मुझे लगा कि शायद वैलिडेशन, कंट्रोल, कंपैरिजन, इन चीजों से ईगो ज्यादा बढ़ता है।
4: क्या होता है, देखो प्यार तो हमें है ही, लेकिन प्यार वाइब्रेशन है। जिस समय पर एक्सेप्टेंस है उस समय पर प्यार है, लेकिन जिस समय आपके मन में उनके प्रति गुस्सा है या थोड़ी देर के लिए भी इरिटेशन है, थोड़ी देर के लिए भी नफरत है, वो प्यार की एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है। प्यार एक वाइब्रेशन है और कुछ नहीं है, एक बहुत प्योर पॉजिटिव एनर्जी है जो एक से दूसरे तक रेडिएट होती है, मदर से चाइल्ड तक, चाइल्ड से मदर तक, वो रेडिएट हो रहा है वाइब्रेशन। पर जिस मोमेंट ईगो आ गया और आप एक्सेप्टेंस की जगह रिजेक्ट ही कर रहे हैं ना, नहीं आप गलत हैं, आप गलत हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी, चाहे वो एक दिन है, चार महीने, उतना समय कोई प्यार नहीं है। वहाँ एक समय पर एक ही वाइब्रेशन और एनर्जी रहती है, है, लेकिन उतने दिन के लिए नहीं है। उतने दिन आप भी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, वो भी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आप भी दर्द में हैं, वो भी दर्द में। साइलेंट ट्रीटमेंट कभी नहीं होना चाहिए, वो हमारे रिश्ते को बहुत डैमेज करता है। क्यों? जब हम बोल रहे हैं ना तो फिर एनर्जी निकल जाती है।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: जब हम साइलेंट हो जाते हैं ना, हम बोल नहीं रहे,
3: लेकिन वो अंदर हमें और नेगेटिव स्पाइरल में डाल
4: चलता है।
3: हाँ, वो दिमाग खराब होता है कि वो क्या है, वो समझ क्यों नहीं रही है, उनको समझ नहीं आता, वो हमेशा अपनी चलाती हैं, हमेशा ये दिमाग में चलता रहता था।
4: वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचता है, वो जो रिश्ता है उसमें दूरी ले आता है टू एन एक्सटेंड। आपके पेरेंट्स होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो भी घृणा और नफरत हो सकती है, होती भी है ना। कितने रिश्ते हम देखते हैं, वो बच्चा भी कह देता है हिट माई फादर, आई हिट माई मदर। क्यों? बहुत ज्यादा उस रिश्ते में कंट्रोल था, एक्सेप्टेंस नहीं थी, कंट्रोल था, एंगर था। इंस्पायर करना अलग होता है, मुझे लगता है ये राइट है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, पर कंट्रोल अलग होता है, ये ही राइट है, ये ही आपको करना है, आप ऐसा करेंगे तो ही एक्सेप्टेड और लव्ड है। कंडीशनल वो नहीं हो सकता, दो जने बिल्कुल अलग हैं, उनके पर्सपेक्टिव, उनके एक्सपीरियंस, उनके जीवन जीने का तरीका अलग ही होने वाला है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपने अंदर से ईगो कैसे निकालें? आइए इस पर बात करें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अब ये जो है आपको समझ में तब आता है जब आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो। जैसे कई बार मुझे लगता है आफ्टर माय मम पास्ट अवे मुझे बहुत सीखने का मौका मिला, मैं बहुत चीजें समझने लगा, और अब मुझे लगता है कि लड़के को फायदा नहीं है क्योंकि जब इंसान ही नहीं रहता तो मैं किससे लड़ूं, तो किससे नाराज हूं मैं, किससे मुंह फुला के बैठूं मैं, क्या ही ईगो धरा है। लेकिन ऐसा नहीं कि ईगो खत्म हो गया, ईगो कहीं ना कहीं आ जाता है, अहंकार हमेशा छिपा रहता है कहीं। तो कई बार है जब मैं लोगों को कहता हूँ कि कोई फायदा नहीं लड़के यार, बात सुलझा लो, लेकिन कई ऐसे सिचुएशन भी आते हैं जहाँ पे मैं फिर वही ट्रीटमेंट करने लगता हूँ औरों के साथ। मुझे लगता है मैं सही हूँ, ये समझ नहीं रही है, ये समझ नहीं रहा है, इसको समझ मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, पता नहीं क्यों इसको समझ में नहीं आता। तो शायद मैं साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं वो करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे ही नहीं पसंद, बाद में मुझे समझ में आता है। तो ऐसे केस में क्या करें, हाउ डू यू टेक आउट ईगो, बहुत मुश्किल चीज है।
4: इट इज वेरी स्कैरी क्योंकि कई चीजें जो हमें जीवन भर अच्छी नहीं लग रही होती
3: हम वही दूसरों के साथ कर रहे होते,
4: हाँ वो वैसा बनने लग जाते हैं, और हम कई बार अपने से पूछते हैं ये कब हो गया।
3: बिल्कुल समझ में नहीं आता,
4: बिकॉज दिस वॉज समथिंग दैट आई डिड नॉट लाइक, मैंने कोई गुस्सा करता था मुझे अच्छा नहीं लगा, आज मैं अपनी टीम पर गुस्सा क्यों कर रहा हूँ।
3: बिल्कुल,
4: नाउ अगेन हम माइंडफुली जीवन नहीं जी रहे, हम माइंडफुल होकर के नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने कहा रियलाइज भी हो जाता है। इसीलिए थोड़ा समय सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि हम में से मेजोरिटी को ना गलती करते ही पता चलता है हमने गलत किया।
3: बिल्कुल, इमीडिएटली
4: पता चलता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ कह भी दिया, आपने कहा मैं साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देता, पर अभी भी वो चीजें हो जाती हैं, तो इतना ही हो सकता है कि अब हो गया ना, अब वो चीज तो रिवर्स नहीं कर सकते, पर अब जो हम पहले 4 दिन का साइलेंट ट्रीटमेंट रखते थे अब हम इमीडिएट बात करना शुरू कर सकते हैं।
3: बिल्कुल,
4: ईगो हमेशा, जो आपने पहले एक बहुत सुंदर बात कही थी कि आप अपोलोजाइज नहीं कर पाते, वो जाने नहीं देता, ये भी एक ईगो का रूप है।
3: बिल्कुल,
4: ईगो क्या कहता है, मैं क्यों करूं मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बेंड हूं, उसको बात करनी है तो वो करे, अपने से बात करें, अपने को समझाए। फॉर एग्जाम्पल आप फादर हैं और डॉटर हैं, अब वो डॉटर समझो नहीं बात कर रही है, आप फादर हैं, आप अपने को समझाएं, ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: दो चीजें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक अगर हम बात नहीं कर रहे पीस ऑफ माइंड नहीं होता।
3: हाँ बिल्कुल, दिमाग में चलता ही रहता है,
4: आप बाहर बात नहीं कर रहे पर आप मन में तो
3: बिल्कुल
4: उन्हीं से ही बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं,
3: ज्यादा कर रहे
4: हैं। और ज्यादा कर रहे हैं, किसी और चीज में ध्यान नहीं लग रहा। तो एक तो आप जैसे उन्होंने आपके मन को ओवर पावर कर लिया, पीस ऑफ माइंड नहीं है, नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल, सो फॉर योर पीस ऑफ माइंड एंड बिकॉज यू वैल्यू दैट रिलेशनशिप, आपके लिए वो रिश्ता बहुत जरूरी है, इसलिए आप चूज करते हैं, अपनी ईगो को बोलते हैं आई विल टेक दैट फर्स्ट स्टेप, आई विल टेक दैट फर्स्ट स्टेप। सॉरी बोलना है तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। अब ये बात अलग होती है, एक बार हम सॉरी बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारी गलती है, कभी कभी हम सॉरी इसलिए बोल रहे होते हैं कि हम बहुत ज्यादा किसी पर डिपेंडेंट होते हैं, हमारा जो मन की इमोशनल स्टेट है वो डिपेंडेंट होती है।
3: बिल्कुल,
4: हमें लगता है वो ठीक हो जाए
3: इसलिए हम सॉरी बोल रहे हैं,
4: तो मैं ठीक हो जाऊंगा, आई विल फील कंफर्टेबल, वो भी ठीक नहीं है। आई डोंट नो इफ यू कैन मेक आउट अ डिफरेंस।
3: नहीं, बहुत अच्छी बात बोली, और ये होता भी है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Charge Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमें इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी ऐसा कहते हैं कि यार सामने वाला ठीक हो जाए इसलिए हम सॉरी बोल देते हैं। गलती शायद आपकी हो भी नहीं, लेकिन आप बोलते हैं यार वो तो नहीं सॉरी बोलेगा, मैं जानता हूँ उसको, मैं ही सॉरी बोल के खत्म करता हूँ ताकि बातचीत तो शुरू हो। तो ये आप कह रहे सही नहीं है।
4: नहीं, वो सही है क्योंकि आपकी स्थिति तो उस पर डिपेंडेंट नहीं है ना। वो तो ठीक है, उसमें कोई हर्जा नहीं है। आप बिल्कुल ठीक है एंड नाउ आप जाकर के सॉरी सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आत्मा कमजोर है। आपको लगता है अगर आप थोड़ा सा बेंड हो गए उसके मन का वेस्ट फुल स्टॉप लग जाएगा एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। चाहे वो घर में कोई रिश्ता है, चाहे वो टीम में कोई बात है, और फिर जब वो ठीक हो जाएगा तो जो भी आपको बात उनको कहनी है या समझानी है आप समझा सकते हैं, दैट इज ओके। यहाँ आप बिल्कुल ठीक है, आपके मन की स्थिति उन पर डिपेंडेंट नहीं है। आई एम टॉकिंग जब आप बहुत दर्द में है,
3: हाँ।
4: आप इमोशनली उन पर डिपेंडेंट है।
3: अच्छा, हाँ, अच्छा समझ गया मैं।
4: कई बार ऐसे रिश्ते भी
3: हाँ,
4: होते हैं ना, यू सी यंग पीपल आल्सो, वो फिर एडवांटेज ले लेंगे आपका।
3: हाँ।
4: आपको क्या लगता है जब तक वो मेरे से बात नहीं करता मुझे ठीक नहीं लगता, देन दे कैन एक्सप्लॉइट यू ना।
3: बिल्कुल,
4: आप इमोशनली उनके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप फिर सारा दिन सॉरी सॉरी कहते रहते हैं, अपोलोजाइज करते हैं कि वो ठीक हो जाए। So you will feel good. That means you are emotionally
3: dependent
4: on them. That is not a good thing.
3: तो वो दूसरे का ईगो है कि आप जिसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है जब तक ये छोटे वाले सॉरी हमसे ना बोलें हमारी जिंदगी तो चलती रहेगी लेकिन ये दर्द में रहेगा।
4: हो सकता है कभी कभी आजकल लोग इमोशनली एक्सप्लॉइट कर लेते हैं,
3: तो वो कंट्रोल का ही एक और फैसेट हुआ।
4: का एक और फैसेट है।
3: इसलिए
4: हमें अपनी स्थिति की जिम्मेवारी खुद उठानी होती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Richie Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक और सवाल आया, वो कहते हैं कि जब मैं डीप मेडिटेशन में होता हूँ तो अक्सर किसी के मेडिटेशन एरिया में आने से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है?
2: ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन का पर्पस है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हमें डिस्टर्ब करती है कि मैं मेडिटेशन कर रहा था, आपने उस समय टीवी क्यों चलाया, आपने उस समय फोन पर क्यों बात करी। इस वन टाइम समबडी वाज शेयरिंग कि वो भाई भी ऐसे ही वेरी सिमिलर क्वेश्चन कि मैं जब मेडिटेशन करता हूँ उसी समय मेरी वाइफ फोन पर जोर जोर करके अपने सिस्टर से बात करती है। तो फिर उनको कहा, देखो ये आवाज आपको सुनाई दे रही है। कहते कौन सी आवाज? कहते ये जो जोर जोर की आवाज है, तो नीचे एक सब्जी वाला जोर जोर के सब्जी बेच रहा था,
1: लेकिन वो नहीं सुनाई दिया।
2: तो कहते वो तो उसका काम है, वो तो वो करेगा, उसको चिल्लाना पड़ेगा। उस सब्जी वाले का जो काम है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया था,
1: लेकिन अपनी बीवी के तेज फोन पे बात करना आपने एक्सेप्ट नहीं किया।
2: आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ
1: उस समय वो ना करे।
2: सो अगर हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो वो कोई हमारी फील्ड में आता है उसके कारण नहीं होते। हमारे मन ने कोई एक्सपेक्टेशन क्रिएट की होती है, वो फुलफिल नहीं होती तो हम हर्ट होते हैं, अंदर हो रहे हैं ना डिस्टर्ब। हमारे नेगेटिव थॉट्स हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना।
1: बिल्कुल।
2: तो अपने को याद दिलाएं कि मेडिटेशन का पर्पस ही ये है कि हमें कुछ भी हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, कि इररिस्पेक्टिव सिचुएशन कैसी है, इररिस्पेक्टिव लोगों का व्यवहार कैसा है, इररिस्पेक्टिव वेदर कैसा है, चैलेंजेस कैसे हैं, आप अंदर में काम और स्टेबल हैं और उस स्टेबिलिटी से आप रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी तो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है।
1: और अगर अभी नहीं हो रहा तो धीरे धीरे हो जाएगा। अपने आप को भी वक्त दें और दूसरों पर भी इरिटेट ना हो।
2: जी,
1: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स की शुरुआत। अगर आज सुबह तुम कॉफी से पहले एक्सेल शीट देख चुके हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग रिस्पेक्ट। सेकंड ऑफ ऑल, ये शो तुम्हारे लिए ही है। व्हेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क, प्रिटेंडिंग टू लिसन इन अ मीटिंग, मील प्रेपिंग व्हाइल इमोशनली अटैच्ड टू लेफ्टओवर राजमा, वेलकम होम। यहाँ पर हम करने वाले हैं थोड़ा सा बॉलीवुड का तड़का, थोड़ी सी बकबक, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया एंड फुल ऑन मिर्चीदार वाइब्स के साथ हमारे दिन की शुरुआत। बिकॉज यार, उसके अलावा किसी तरह से शुरुआत होनी भी नहीं चाहिए। देसी टाइमिंग कहता है अब उठने का टाइम हो चुका है, क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग्स शुरू हो चुका है। वैसे एक बात और, अगर तुम्हारा अलार्म और तुम्हारा एम्बिशन आज फाइट कर रहे हैं तो आई एम टीम तुम, आई एम रूटिंग फॉर यू, यू विल सर्वाइव। सो वॉल्यूम फुल, स्माइल रखो ब्यूटिफुल, और मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ बने रहो मिर्ची मॉर्निंग्स पर। फटाफट से जाओ मुझे फॉलो भी कर लो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो मुझसे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La vieva la murga. Milci, murga.
2: हेलो
3: हेलो मिस्टर गौतम,
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: सर कुछ गाके सुनाइए।
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
3: वही सर, ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कौन से गाने हैं
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। मैं एक पेशकश कर रहा हूँ। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
2: सुन ले बात,
3: मेरी बात
2: सुन, पहले बात सुन।
3: हाँ सर,
2: और बंद करिए, बीन बीन जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है। सर बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की डेट यानी कि 5th ऑफ जून, पता करते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ था। 1915 में डेनमार्क सेड एक्सक्यूज मी इक्वालिटी प्लीज एंड ऑफिशियली गेव वुमेन द राइट टू वोट। 1944 में वर्ल्ड वॉर टू के टाइम थाउजेंड्स ऑफ ब्रिटिश बॉम्बर्स हिट टारगेट्स इन नॉर्मंडी सेटिंग द स्टेज फॉर डी डे। 1967 में द सिक्स डे वॉर बिगैन एंड चेंज्ड द मैप ऑफ द मिडल ईस्ट इन वेज स्टिल टॉक्ड अबाउट टुडे। 1968 में यूएस सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी वॉज शॉट शॉर्टली आफ्टर अ मेजर इलेक्शन विक्ट्री। 1972 में द यूएन created World Environment Day, because even back then Earth was giving subtle hints ki guys maybe recycle. 1981 में doctors published the first medical report of what the world would later know as AIDS, a moment that changed public health forever. And in India, 1984 में Operation Blue Star began, becoming one of the most discussed chapters in modern Indian history. Now catch me on social media, जहाँ पर मेरा handle name है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा number है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट हिट गाना, हिट गाना, हिट गाना।
2: Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and this is Mirchi Mornings and आज की headline has entered the chat. It's about Aamir Khan. कल मैंने तुम्हें बताया था he is getting married ऐसे rumors उड़ रहे हैं and the actor has now confirmed he'll tie the knot with his girlfriend Gauri Spratt on July the 5th and he said they both feel ready to take the relationship to the next level. And can we appreciate the optimism? Some people give up after one bad situationship. Meanwhile, Bollywood said picture abhi baki hai mere dost. Aur wo dost hai Aamir Khan. Also, side quest unlocked. बहुत सारे लोगों को सडनली याद आया कि आमिर खान बहुत ज्यादा अमीर भी हैं रियल लाइफ में. आमिर के पास है लग्जरी होम्स, फैंसी व्हील्स एंड इनफ रियल एस्टेट टू मेक एनीवन इमोशनल. बट आज की हेडलाइन इजंट एसेट्स, इट्स कमिटमेंट. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि वेदर इट्स फर्स्ट लव और थर्ड लव और 30th लव और जस्ट फाइनली रिप्लाइंग टू दैट व्हाट्सएप मैसेज आफ्टर 6 बिजनेस डेज, पीपल मूव एट देयर ओन पेस एंड सो डज आमिर खान, जो अब तीसरी शादी बहुत जल्दी करने वाले, इनफैक्ट एक महीने में करने वाले एग्जैक्टली आज से. हमारी तरफ से तो आमिर खान सर के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं एंड आई जस्ट होप ये उनकी फाइनल शादी हो. एंड नाउ लेट्स हेड इनटू मिर्ची दार म्यूजिक, बट बिफोर दैट यू गो एंड फॉलो मी इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys, Priscilla here and welcome to your Mirchi Mornings ka weather update. Kyunki weather check karna before outfit selection is basically adulting. Right now it's a cool 60 degrees Fahrenheit and clear skies. Lekin wind jo hai, it woke up feeling extra. So it's making us feel 57 degrees Fahrenheit. Translation ye hai ki bahar nikloge to t-shirt nahi hoodie pehen kar jana padega. Good news ye hai ki zero rain in the last 24 hours and zero rain is expected in the next 24 hours. Umbrella aaj officially day off le sakte. मॉर्निंग में अराउंड 9 से 10 के बीच में थोड़ा सा पार्ट टाइम क्लाउडी हो जाएगा विच वोंट कॉज अ लॉट ऑफ ड्रामा इन योर लाइफ बट देन बाय अराउंड 1 पीएम क्लाउड्स बिकम मोर कमिटेड एंड थिंग्स विल बिकम मोस्टली क्लाउडी आज वैसे एक एयर क्वालिटी अलर्ट भी है दीज कंडीशन स्टार्टेड एट 15:45 थर्सडे और आज का टेम्परेचर रेंज भी देख लेते इट्स गोइंग फ्रॉम 60 ऑल द वे अप टू 90 डिग्रीज फारेनहाइट विद सनशाइन एंड कंडीशन डूइंग देयर थिंग इट कुड एक्चुअली फील लाइक 92 डिग्रीज फारेनहाइट अब बाहर निकलोगे तो SPF 50 प्लस प्लस प्लस लगाकर ही जाना लेयर के प्लेयर बनना एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड और अभी मिर्ची को ऑन रखो क्योंकि मैं बोले तो प्रिसला तुम्हारे साथ में हो ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स मुझसे बातें करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची दैट्स 9033647244 स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Alo.
3: Alo, usko vahan se mat uthao, yaar. Alo.
2: हेलो
3: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब इसको वहां से मत उठाओ यार ऐसे नहीं उठाएगा यार टूट जाएगा सारा सामान टूट जाएगा वहां से मत करो उसको वहां से हेलो हेलो भाई साहब
2: हाँ जी बोलो
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन
2: हाँ जी देते
3: एक सेकंड होल्ड करना उसको वहां से मत उठाया मैं तेरे से बोल रहा हूँ दो टुकड़े हो जाएंगे सारे मत उठा नहीं उठेगा तेरे से ये सामान भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ ये मशीनें बंद कर दे मशीनें बंद कर दे सारी मशीन बंद कर दे शायद तो सारी बंद कर दे ये गिर गया है और इसको उठाना है यार ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है कितना सामान उठाते
2: हैं जी उठवा लेंगे उतना ही हम
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को हाँ ये आप ये भेज दो ये इसको इसको उठवा दो यार ये तो गिरा पड़ा यार ये इसकी वजह से सारी परेशान है
2: किसको जी
3: सेंसेक्स गिर गया है इसको उठवा दो आप
2: क्या गिर गया
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो सेन नीचे रह जाए तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी
2: भाई साहब क्या उठवाना है आपको
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको
2: सामान
3: उठवा
2: क्या मजाक कर रहा है
3: तो मार्केट गिर गया यार मार्केट गिर गया उसमें सारे सारे परेशान है यार आप उठवा नहीं सकते तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ सेंसेक्स गिर गया यार
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो सेंसेक्स उठवा दो यार कब से गिरा पड़ा है हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और फोन मत काटिएगा मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते मार्केट की बात कर रहा था क्रेन किराए पे देते हैं आपका मुर्गा बन गया आप रेडियो मिर्ची पे हैं हेलो
2: कहाँ से बोल रहे
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची फ्रेश माल
6: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: Good morning, guys. This is Priscilla and welcome to Mirchi Mornings. So there was this dog in China named Shatu. Not just any dog, but an internet famous travel buddy with over 1.5 million followers. Lekin recently, Shatu went missing. And later, according to reports, the owner discovered the dog had reportedly been mistaken for a stray, taken and sold. And the story has sparked a lot of emotions online and conversations around pet identification, safety and how quickly situations can escalate. And honestly, whether someone has 1 follower or 1 million followers, pets are family. Also, tiny reminder for all the pet parents listening to me, while your dog judges your life choices from the couch, कॉलर्स, टैग्स, अपडेटेड इन्फोज, ये सब बोरिंग है अंटिल सडनली इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत।